अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी

0: उजाला।
1: महफिलों के दामनों में साहिलों के आसपास ये सदा गूंजेगी सदियों तक दिलों के आसपास। और ये सदा किसकी सदा थी जो ये कहता हुआ चला गया कि तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं। ये थे जनाब मुकेश साहब, जिनके गाए हुए गाने आज तक ताज़ा और जिंदा हैं।

0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोल मोल नहीं होती, और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

हमको मोहब्बत हो गई है तुमसे और तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे। फिल्म हाथ की सफाई का गीत और गीत के गाने वाले किशोर कुमार एंड लता जी, और ये उजाला रेडियो है। एक और गीत आप सुनेंगे अब प्रोग्राम में, अमित कुमार एंड अन्नू राधा पौडवाल से।

नाम, अपने मन की जानू और तेरे मन की राम. Ja, prachtig mooi nummer gebracht uit de film Yar Yar deel 2. En ja, dat was de stem van Setje Tenden.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तुझ

ये उजाला रेडियो है। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग शुरू करते हैं। हर एक सुनने वालों को अदाबर्स और नमस्कार। मैं निशा बोल रही हूँ। आप सभी सुनने वालों को प्रोग्राम सबरंग में एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सदाबहार नगमे हमने चुने हैं आपको सुनवाने के लिए। प्रोग्राम आगाज करती हूँ ये दुआ से। जिंदगी जिंदगी जितनी भी मसरूफ हो, मगर कुछ लोगों से चाहत का ऐसा ताल्लुक होना है कि वो यादों और दुआओं से कभी दूर नहीं होते। खुदा पाक आपको हमेशा सलामत रखे। परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा।

मोहम्मद रफी साहिब से आपने अभी ये मजहबी गायन सुना। एस एन त्रिपाठी की मौसीकी थी नगमात अख्तर रुमानी का। मेरी अर्ज सुनो बनवारी, पूरी कर दो मनोकामना।

डी बर्मन का सजाया संगीत और गुलशन बावरा का लिखा तर्ज में पेश था ये भजन। प्रोग्राम की शुरुआत में पेश था मजहबी और भक्ति संगीत। शबे इंतजार की कश्मकश में ना पूछ कैसे शहर, शबे इंतजार की कश्मकश में ना पूछ कैसे सहर होती, कभी एक चराग जला दिया कभी एक चराग बुझा दिया, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है।

इसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। खूबसूरत अंदाज में पेश थी ये गजल भूपेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाजों में, मौसिकी बप्पी लहरी की। पहले पहल तो मैं उसकी तलाश में था, अब वो तो मुझ में है और मैं खो गया हूँ। तुम भी पहले पहल, हम भी पहले पहल।

ना अंदाज में पेश थी ये गजल अलका याग्निक की आवाज़ में शायर जावेद अख्तर का कलाम और मौसिकार अनु मल्लिक की मौसिकी थी। तन्हाइयाँ तुम्हारा पता पूछती रहे, शब भर तुम्हारी याद ने सोने नहीं दिया, पत्ते कहीं खरके हवा आई सोचो कि हम

ये शाम की तन्हाइयां ऐसे में तेरा गम। फिल्मी गजल आपने अभी लता मंगेशकर से सुनी। शंकर जयकिशन की मौसिकी, शायर शैलेंद्र का कलाम था। फूल तो हर रंग के मिल जाएंगे तुम्हें, मगर हर रंग से खुशबू हमारी नहीं आएंगी। फूल है चांद है क्या लगता है, भीड़ में सबसे जुड़ा लगता है।

मुमताज राशिद का कलाम और हरिहरन की आवाज में पेश थी ये गजल। अब हम आपके खिदमत में हल्के मीठी धुनों में नगमे सुनवाएंगे। पहला गीत पेश है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

लौट गया गम का जमाना, आई खुशी लहरा के। विश्वनाथ राम मूर्ति का संगीत और राजेंद्र कृष्ण का लिखा तर्ज था। इसी अंदाज में आइए सुने अगला गीत।

सदाबहार गीत आपने अभी मुकेश की आवाज में सुना। फिल्म नकली नवाब से मैंने ये गीत लिया है। संगीत देने वाले थे संगीतकार बाबुल और शायर कैफी अजमी का लिखा तर्ज था। अब आई सुने मोहम्मद रफी साहब से ये नगमा।

जाने किस रूप की जादू भरी पर छाई हो, दिल छू लेने वाले नगमा पेश था। संगीत से सवारे थे शंकर जयकिशन। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं, एक जरा सा दिल तो खोया है और तो कोई बात नहीं।

कमाल का दो गाना आपने अभी मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों में सुना। अब लीजिए पेश है सुमन कल्याणपुर से अगला गीत।

फिल्म जहाँ प्यार मिले का गीत पेश था आवाज़ थी सुमन कल्याणपुर की। मकामे मोहब्बत तुमने समझा ही नहीं, वरना वरना जहाँ तक तेरा साथ है वहीं तक जिंदगी मेरी। कभी कभी सपना लगता है, कभी ये सब अपना लगता है, तुम समझा दो मन को।

फिल्मी दुनिया में आप सभी सुनने वालों को एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस हिस्से का प्रोग्राम में अक्सर बयान करती हूँ उन शख्सियत के बारे में जो अपने फन से, अपनी कला से फिल्मी दुनिया के ऐतिहासिक किताबों में उनका नाम सुनहरी अक्षरों में लिखे गए हैं। एक और शख्सियत का नाम शामिल है, वो है महान मारुफ स्वर की देवी लता मंगेशकर जी। पिछले प्रोग्राम में हमने इत्तला किया था कि मंगेशकर खानदान कहाँ के रहने वाले थे, ये भी बतलाई थी कि दीनानाथ मंगेशकर ने बचपन से खुद अपनी पहचान बनाना चाहते थे। वो अब 18 साल का हो गया था और सेठ हरिदास रामदास की बेटी नर्मदा से शादी किया था। 4 साल बाद नर्मदा और दीनानाथ के घर में बेटी पैदा हुई, पर उसके बाद नर्मदा संभला नहीं और थोड़ी ही दिन बाद नर्मदा का इंतकाल हो गई। फिर दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन शिवांती से नेहती सेफनतवेतक में शादी कर लिया। आगे क्या होता है, पहले हम एक गीत सुनवाते हैं लता मंगेशकर की स्वर में।

मौसिकार मदन मोहन की मौसिकी में पेश था ये नगमा नगमात कैफी अजमी का। इस गीत से पहले आपने सुना कि मास्टर दीनानाथ दोबारा शादी किया नर्मदा की छोटी बहन शिवांती से, ये था साल 1920 में। फिर यहाँ से शिवांती और मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की नई जिंदगी शुरू हुई। शिवांती ने अब माँ बनने वाली थी, वो उम्मीद से थी। मास्टर दीनानाथ की शोहरत अब बुलंदियों पर थी। गीत संगीत के साथ साथ वो एस्ट्रोलॉजी पर भी ध्यान देता था। एक बार वो अपने दोस्त से कहा कि उनकी बीवी उम्मीद से है और उसे एहसास है कि बच्चा जो पैदा होगा अलग होगा, पर बच्चा नहीं बेटी पैदा हुई। तारीख था शनिचर का दिन 28 सितंबर 1929 को शिवांती और मास्टर दीनानाथ का घर बेटी पैदा हुई। गली मोहल्ले में ऐलान हुआ कि मास्टर दीनानाथ का घर लक्ष्मी पैदा हुई है और नाम है लता। मास्टर दीनानाथ ने कहा कि जब भी वो बेबी लता की गोद में गाकर सुलाते थे तो लता साथ सुर में गुनगुनाती थी, और जब बाबा रियाज करता था तो छोटी लता आराम से बैठकर सुनती थी। बाबा बाहर के बच्चों को भी शास्त्रीय संगीत सिखाते थे। एक बार बाबा को अचानक किसी से मिलने बाहर जाना पड़ा और उसी समय एक लड़का अंदर रियाज कर रहा था और बार बार गलतियां कर रहा था। लता आंगन में खेल रही थी, वो तब 5 या 6 साल की थी। लता अंदर आकर सही तौर लड़का को गा कर सुनाई। बाबा अंदर जब आई तो लता की आवाज सुनकर खुद हैरान हो गया। अपनी बीवी से कहा कि घर में सरस्वती पैदा हुई है और उसे एहसास नहीं था। बाबा ने लता और छोटी बहन मीना से कहा कि कल से तुम दोनों सुबह 5 बजे उठकर तानपुरा के साथ रियाज करोगे। इसी तरह दोनों बहनें सुबह 5 बजे उठकर रियाज करती थी। 5 साल की उम्र में लता ज़्यादा बीमार हो गई थी, पूरी शरीर में मांसलन निकली थी। बाबा और माँ परेशान थे, पर 3 महीने बाद लता संभलने लगी। बाबा बैंड बाजा के साथ दूर दूर रास्ते में ऐलान किया कि लता दोबारा नई जन्म पाई है। कहानी आगे बढ़ाने से पहले एक गीत सुनवाते हैं।

लता मंगेशकर से आपने भी ये गीत सुना। बाबा बेटी लता की काबिलियत, उनके संगीत के लगन देखकर ज्यादा ध्यान देने लगा। 6 साल की उम्र में लता फिल्म चांदी दास देखी थी, जिसमें अदाकार था कुंदनलाल साइगल। घर आकर कहा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो हम कुंदनलाल सहगल से शादी करूंगी। बाबा मतलब मास्टर दीनानाथ अपने बीवी और बच्चों से खुश थे। वो अपनी नाटक मंडली के साथ कई दिनों घर से दूर रहते थे। लता रियाज करती थी और अपने बहनों के साथ घर में एक्टिंग करती थी और गाना जो फिल्म में सुनती थी नकल करती थी। बच्चे स्कूल गए पर सिर्फ 2 दिन। आशा स्कूल जाने से डरती थी और रोने लगती थी। लता आशा की उंगली थाम कर स्कूल गए और क्लास में सब बच्चों को गाना सिखाने लगे। स्कूल के मास्टर जब क्लास में आया तो लता को जोर से डांटा तो लता ने कहा, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मास्टर दीनानाथ की बेटी से इस तरह से बातें करने को। वो अपनी बहनों को साथ लेकर घर वापस चली गई। बाबा बच्चों से स्कूल के बारे में कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि बच्चे संस्कृत पाठशाला जाते थे संस्कृत सीखने के लिए। बाबा कम प्रोग्राम अब करते थे पर लता को हमेशा साथ ले जाते थे। एक दिन किसी ने बाबा से सवाल किया, क्यों लता हमेशा सादा कपड़ा पहनती है? तो बाबा ने कहा, एक दिन वो खुद जवाब देंगे। मास्टर दीनानाथ अब ज़्यादा घर में बच्चों पर ध्यान देते थे। उनकी तबीयत अब ज़्यादा बिगड़ने लगा तो वो बीबी बच्चों को पास बुलाया और लता से कहा, मैंने लाखों पैसा कमाया पर आज देने के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ एक तानपुरा और मेरा नोटबुक जिसमें बंदिशें और रागो है। लता तुम बड़ी हो और सब जिम्मेदारियां अब आप पर है। लता को एहसास थी कि बाबा कुछ दिनों का मेहमान था। अब आखिर वो घड़ी आई जिसे दुनिया में कोई बच नहीं सका और फिर एक महान मारूफ शख्सियत मास्टर दीनानाथ मंगेशकर 24 अप्रैल 1942 को दुनिया से अलविदा लिया। छोटी बेटी लता पर माई बहनें मीना आशा उषा और भाई हृदयनाथ की जिम्मेदारियां उनकी कंधों पर थीं और सोच रही थी, मैं अभी एक नन्हा सा बच्चा हूँ।

जी हाँ, लता अभी सिर्फ 13 साल की थी। मास्टर दीनानाथ की गुजरने के बाद घर में पूजा रखे गए तो पुणे से एक औरत आई थी। उनके चेहरे पर नूर थी, चमक थी, और कहा कि सपने में वो देखा कि मास्टर दीनानाथ का रूह अभी भी भटक रहा है। उसकी रूह इस नारियल में है, इसमें वो चैन पाया, राहत पाई, और लता से कहा, बेटी अपनी पूजा रूम में इसे सदा रखने को। लता मंगेशकर एक इंटरव्यू में इस नारियल के बारे में जिक्र किया था कि उनकी पूजा रूम में नारियल उनके लिए कितना अहम है। जिंदगी एक पल में कितना बदल जाता है। लता अपनी माँ से कहा, अब मुझे काम करना होगा, है ना माई? माई इतराज किया, पर क्या सलाह देती। हाँ, लता एक बार बाबा के नाटक में अदाकारी किया था, वो तब सिर्फ 7 साल की थी। बाबा के ड्रामा में जिसने नारद का रोल करना था वो आया नहीं। बाबा परेशान था तो लता ने कहा, बाबा आप परेशान मत होना, मैं नारद का किरदार अदा करूंगी। बाबा ने कहा, एक्टिंग के साथ कई बंदिशें हैं, गा पाओगे? पर 7 साल की बेटी लता बाबा और दर्शकों को चौंका दिया था अपनी अदायगी और संगीत से। लता का ये पल संगीत की दुनिया में ज़्यादा नहीं चला। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की दोस्तों को याद था कि वो अपने बच्चों को और ख़ास करके बेटी लता को भरपूर शास्त्रीय संगीत पर ध्यान दिया था। एक गीत के बाद बातें आगे बढ़ाएंगे।

लता की फिक्र थी अब कैसे गुजरेंगी छह लोग की जिंदगी। पर शुक्र है मास्टर दीनानाथ का दोस्त श्रीपत जोशी 13 साल की लता को मौका दिया मराठी फिल्म पहेली मंगल गौर में अदाकारी करने को। साथ में थे अदाकार मास्टर विनायक। माई ने अपने बच्चों से कहा कि बाबा नहीं है लेकिन तुम सबको बाबा के सिखाई हुई रास्ता पर चलना है। लता सुबह जाने से पहले और शाम को सोने से पहले रियाज करती थी। मास्टर दीनानाथ के गुजरने के 1 साल हो गया था तो माई बाबा का पसंद का खाना तैयार किया था लेकिन उसे सब सामान खरीदने के लिए बाबा का चांदी का थाली को बेचना पड़ा। लता को जब पता चला कि बाबा का चांदी की थाली माई ने बेच दिया तो वो बहुत नाराज हुई। तो माई ने कहा तुम बाबा की तरह गाओगे तो चांदी की थाली नहीं सोने की सिक्के घर लाओगे। लता की अदायगी और उनकी सुरीली आवाज़ की वजह से दूसरी बार मौका मिला फिल्म बड़ी माँ में अदाकारी करने को। इस फिल्म में कई जाने माने फनकारों थे जैसे बेगम नूरजहान, सितारा देवी, याकूब, लीला मिश्रा और बेबी लता। शूटिंग के दौरान जब फुर्सत मिलते थे तो नूरजहान ने लता से गवाते थे और साथ में वो भी गाती थी। नूरजहान ने मास्टर विनायक से कहा विनायक साहब मेरी बातों को याद रखना, एक दिन ये लड़की अपनी आवाज़ से बुलंदियों को छुएंगी। और लता से कहा बेटी तुम रोज़ाना खूब रियाज करना। इसी तरह स्वर की देवी लता मंगेशकर और मलिकाए तरन्नुम बेगम नूरजहान की दोस्ती सदा कायम थी।

अभी हमने फिल्मी दुनिया की उस मारुफ शख्सियत लता मंगेशकर के बारे में बयान किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं मोहम्मद रफी साहेब से अगला गीत, इससे पहले शेर अर्ज है। डूबते हुए दिल को तिनके का सहारा भी नहीं, मौजे तूफान है यहाँ कोई किनारा भी नहीं। अब तो किस्मत में मोहब्बत का सितारा भी नहीं।

दर्द भरा गीत पेश था, आवाज थी मोहम्मद रफी साहेब की, शायर हसरत जयपुरी का लिखा तर्ज था, संगीत से सवारे थे शंकर जयकिशन। अगला गीत पेश है, गाने वाले हैं हेमंत कुमार ने।

सदाबहार गीत पेश था सचिन देव बर्मन का। संगीत रचना गीतकार थे शायर मजरू सुल्तानपुरी। मोहब्बत की राहों में दिल को इस कदर बेकरार किया, चोट खाई है रूह पर फिर भी सिर्फ उनसे ही प्यार किया। वो ना आए मगर उनकी यादों की खुशबू आज भी साथ है। तड़पते रहे तन्हाई में पर हर लम्हा उनका ही इंतज़ार किया।

फिल्म द ट्रेन का गीत पेश था और ये गीत अदाकारा नंदा पर फिल्माया गया था और साथ में थे अदाकार राजेश खन्ना जी। हमारे अजीज सुनने वाले, फासले फासले चाहे कितनी दूर क्यों ना हो, सुनहरी दौर के नगमे दिलों को मिला देते हैं।

अमर गीत पेश था, गाने वाले थे मुकेश और लता मंगेशकर। फिल्म शोर से ये गीत लिया है, संगीत से सवारे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ऐ मेरे हमदम मेरे दोस्त, फिर वही नगमा सुना दे, दिल की सुनसान गोशो मतलब कोने को एक बार फिर से जगा दे, जो मिट चुके हैं जमाने से उन फसानों को दोहरा दे, मेरी तन्हाई का दर्द समझ और मुझे खुद से मिला दे।

0: अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तेरे बिन, कभी बात करने की हसरत और कभी देखने की तमन्ना, तुम बिन मन की बात अधूरी, दिन है अधूरे, रात अधूरी।

फिल्म मृत्यु दंत का नगमा पेश था महान शायर जावेद अख्तर का कलाम था मौसिकी आनंद मिलेन की। आवाजें थी कुमार सानू और साधना सरगम की। समय तो धीरे धीरे चल मिलकर सुनाएंगे आशा भोसले और किशोर कुमार।

समय तो धीरे धीरे चल, अमर गीत आपने अभी सुना। संगीत से सवारे थे राहुल देव बर्मन और गीत रचना राज कवि तुलसी का। कौन कहता है कि मोहब्बत आंखों में होती है, दिल तो वो भी ले जाते हैं, दिल तो वो भी ले जाते हैं जो नजरें झुका कर चलते हैं।

शोखियाँ नजर में है, शहराना अंदाज में पेश था ये नगमा। लक्ष्मीकंद प्यारेलाल की मौसिकी और आनंद बख्शी का कलाम था। अकेले जीने की आदत तो पहले से थी, लेकिन लेकिन न जाने क्यों आजकल तन्हाई महसूस हो रही है।

राहुल देव बर्मन का सजाया संगीत में पेश था ये नगमा बोल था आनंद बख्शी का। मैं जिस दिन देख लूं तुमको मुझे महसूस होता है कि ये दुनिया कितना खूबसूरत है। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते।

फिल्म आशिक में से ये गीत पेश था। संगीतकार शंकर जयकिशन संगीत से सवारे थे और शायर शैलेंद्र का गीत रचना था। रोमानी अंदाज में आइए सुने लता मंगेशकर से ये खूबसूरत नगमा।

तो प्यार मेरा खूबसूरत अंदाज में पेश था ये नगमा महान शायर राजेंद्र कृष्ण का लिखा तर्ज और संगीत से सवारे थे से रामचंद्र। इसी रोमानी अंदाज में अगला नगमा पेश है आशा भोसले की आवाज़ में।

फिल्म उमंग का नगमा आपने अभी आशा भोसले से सुना। गीतकार अनजान का तर्ज, संगीत देने वाले थे शंकर जयकिशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सुनने वाले ये प्रोग्राम से लुत्फ उठा रहे हैं। अब आइए सुने तलत महमूद से ये नगमा।

वहाँ नगमा पेश था तलत महमूद की आवाज में। अब आइए सुने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहिब से ये दो गाना।

फिल्म पारस मनी से ये दो गाना लिया है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में कलाम था असद भोपाली का, संगीत देने वाले थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब आइए सुने मुकेश से अगला गीत।

और इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। नमस्कार। खादिमा थी निशा।

बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। और गीत आप सुने तलत महमूद जी की आवाज में, फिल्म का नाम कैप्टन किशोर, और ये उजाला रेडियो है। मोहम्मद रफी साहब हिस्सा लेंगे अब।

ढल जाए हाय रात ना जाए। और मोहम्मद रफी साहब की आवाज फिल्म गाइड का गीत को आप सुने, मुकेश जी हिस्सा लेंगे। उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

चांद को क्या मालूम कि चाहता है उसे कोई चकोर। मुकेश जी की आवाज और फिल्म लाल बंगला से गीत को आप सुने। एक बार फिर मोहम्मद रफी साहब शारदा के साथ।

0: सैया दिल में आना रे और आके फिर न जाना रे। मोये मार सैया की तो आदत है आकर के फिर चले जाने की। दिस रामदेव चैतू अब उजाला रेडियो का प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा है, सुनिए।
1: सुनावे लागे एक सुंदर सुगंध।

एक सुंदर सुगनवा सुनावे लागे। रामदेव चाहे तू की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो है ये मोई लगे तो।

आशा भोसले एंड शमशाद बेगम जी, फिल्म किस्मत से गीत आप सुने। एंड उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मोहम्मद रफी साहब अब हिस्सा लेंगे।

सपना वो टूट गया क्या करें, लेकिन भरम वो दिल को प्यारा था। आप नाराज खुदा खैर करे,

अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर ये शानदार सिनेमा जो कि पेश किया गया है. चेक फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन ujala.nl, उजाला रेडियो, DAB+ पर हॉलैंड भर में.

0: उजाला पेश करे है दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। एतवार एक तारीख नवंबर जोंदख ए नवंबर के दिन में थिएटर मीरफार्ट अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। दिवाली कॉन्सर्ट से पहले दिवाली फकल ऑफ तख्त में आप मुफ्त में हिस्सा ले सके हैं और दिवाली कॉन्सर्ट में लाइव ऑन स्टेज कलाकारों संजय जोधा, मौसमी, इंद्रोनील रॉय, रविंदर सिंह बेदी, सत्यम माता दिन, अविष्कार ऑर्केस्ट्रा के साथ जिसका लीडर है माएस्ट्रो रोनी भिखारी, प्रेजेंटेशन के लिए स्टेज पर होंगे सुधीर एंड जया। जोंदख इन नवंबर के दिन में 2:30 बजे से हाफ थ्री से इन लोग एंड दिवाली फोर प्रोग्राम क्वार्ट ओवर थ्री ग्रेटेस्ट फकल ऑफ तख्त क्वार्ट फोर फीर से कॉन्सर्ट के शुरुआत हुई पहला भाग। टिकट के दाम है 20 यूरो और 15 यूरो। इसमें है एक ड्रंकी ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट खर्दरोब और ग्रेटेस्ट टॉयलेट खबरें। जाने के चाहिए आपके कि इस बार स्टट्स पास न रही। टिकट और जानकारी के लिए meerfart.nl जल्दी से टिकट खरीद लिए नहीं तो आपके पछताई के पड़ी। और हाँ, हमें तो जाए के पड़ी और आपके तो आवे के पड़ी। हाँ, दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जोंदख ए नवंबर के दिन में थिएटर द मेयरफार्ट अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। अभी से आपको शुभ दीपावली।
1: Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, mooie of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke dipfris cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्राग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een pechgeval op de afsluitdijk op de A7 vanuit Friesland 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Breesanddijk en Den Oever. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है FM DAB+ प्लस तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट क्या द बेस्ट उजाला रेडियो
3: तुझे लगे ना नजरिया
2: उजाला सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया

0: Bojana Radio.
1: The best radio station on the planet.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

धूमधाम मौसम और मस्त महीना। फिल्म उजाला का गीत आप सुने उजाला रेडियो पर, और गाने वाले मन्ना दे एंड लता जी।

मैं जाऊंगी मेरे पीछे ना आना, चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना। सुमन कल्याणपुर एंड मुकेश जी से आप सुने और फिल्म का नाम दिल ही तो है। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सुनने वालों, लता जी के साथ अब आप सुनेंगे द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद साहब को।

ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे, उन दिनों की बात है। तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का नाम और गाने वाले सोनू निगम एंड सरिका कपूर, इन दोनों से प्रोग्राम में गीत को आप सुने उजाला रेडियो। एक बार फिर सोनू निगम, इस बार सुनिधि चौहान के साथ।

सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान, इन दोनों से आप सुने कि जब से मेरे दिल को हुए उफ। फिल्म का नाम तेरी मेरी कहानी और स्टेशन

है बीनू कोटरावर, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों, तो डीजे आप फरमाइश और उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो और उजाला रेडियो। दिस खाई बिनु कोटरावर, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट कॉप मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो और उजाला रेडियो।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडम से परिवार मुंगार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते सोमवार को 81 साल के आयु में एनन तख्त ख्यार और पत्नी श्रीमती सोनिया बख्तावर मुंगार का पति लड़कन महेंद्र, गीता दत्त, मनोज गुरदत्त और बेटी मुंगार के पिता चारपतो एक दामाद के ससुर सभी लड़कन के आजा नाना पर नाना पर आजा। आम्स्टरडम ब्रेंतानो स्रात का रहने वाला श्रीमान बिसुंदत मुंगार की मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है। सुरीनाम में पहले फरलैंड हानास्लुस्टवेख का रहने वाला जो था। आम्स्टरडम से परिवार मुंगार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते सोमवार को 81 साल के आयु में एनन तख्त ख्यार और पत्नी श्रीमती सोनिया बख्तावर मुंगार का पति लड़कन महेंद्र, गीता दत्त, मनोज गुरदत्त और बेटी मुंगार के पिता चार पतो एक दामाद के ससुर सभी लड़कन के आजा नाना पर नाना और पर आजा। आम्स्टरडम ब्रेंतानो स्रात का रहने वाला श्रीमान बिसुंदत मुंगार की मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है। सुरीनाम में पहले फरलैंड हानास्लुस्टवेख का रहने वाला जो था। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शनिचर के दिन में 2 बजे से 3:30 बजे तक किए जाएंगे। वेस्खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 ओक मेरवेख 275 आम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-20-05-03-55 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो परिवार मुंगार के दुख में शामिल है।

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर Dit is even de hart van de ANWB. De drukte neemt verder af. Er zijn nog een paar files op de A58 Tilburg richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Moergestel en Best in 6 kilometer file. A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent. Een half uur vertraging in 4 kilometer file. 3 kwartier extra reistijd op de N325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Nijmegen en Knopend Ressen 3 kilometer file door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर नहीं बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन उजाला .net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबुल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

इफ्तिदाई इश्कवी हम सारी रात जागे, अब तो अल्लाह जाने की क्या होगा आगे। लता जी मुकेश जी के साथ और फिल्म का नाम हरियाली और रास्ता। मोई लगे तो

ये उजाला रेडियो है। नवरात्र के उपलक्ष पर सुनने वालों, एक विशेष प्रोग्राम को आप लोग अब सुनेंगे। और प्रोग्राम का इस भाग हम लोग बना सकेंगे अम्स्टर्डम जोयतो से अपोतेक द ड्रीफ के मदद से। यहाँ पर है अपोतेकर शांति रामशरण और कर्मचारियों, इन लोगों की तरफ से नवरात्र के शुभकामना आप तक पहुंचे।

ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, नवरात्र के उपलक्ष पर आप अब प्रवचन सुनेंगे और ये है मान्यवर परम पूज्य पंडित श्री परशुराम राम लोचन तिवारी जी के जरिए।

उजाला रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुनने वाले मेरे सभी भाइयों बहनों, आप सभी को जय अम्बे, जय जगदम्बे। जैसा आप लोग जानते हैं तो नवरात्रि के हम तीसरा पड़ाव पर पहुँचे हुए हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि तीसरा दिन, तीसरी रात्रि माता आदिशक्ति दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्र की जप तप आराधना में जो सभी लोग लगे हुए हैं, उसके लिए यह तीसरा दिन है और तीसरी रात्रि है। आदिशक्ति माता बड़ी ही करुणामयी है, जो अपने भक्तों के ऊपर सदैव कृपा करती है। और एक बात आप देखिएगा कि जिस तरह से तुरंत या बहुत ही सहज में हम जन्म नहीं लेते हैं, बड़ी ही कष्ट के साथ माता का दर्शन हमें होता है और बड़ी ही कष्ट के साथ माँ अपने औलाद को भी 9 महीने तक अपने गर्भ में धारण करती है। इसी तरह से आदिशक्ति भगवती दुर्गा की जितनी भी मंदिर है भारत में, सिद्धपीठ, वह सभी तक करीबन ऊंचाई पर है। ये नहीं कि आप चलते चलते तुरंत पहुंच जाएंगे समतल भूमि पर है, अपर प्लाट्स पर है, नहीं, तकरीबन जितने भी मंदिर है भगवती आदिशक्ति के पहाड़ों पर, चाहे वो आज भारत में हो चाहे भारत से बाहर गिरे हुए हो, कोई बात नहीं है। भिंगलाज जो है वो आज भारत में नहीं है, भारत के बंटवारा के बाद में वो दूसरे ही देश में चला गया है। नेपाल जो है उसमें भी भगवती दुर्गा की सिद्धपीठ है। आज की जो बांग्लादेश है उसमें भी भगवती दुर्गा की सिद्धपीठ है। तो इस तरह से भगवती दुर्गा की जो 51 पीठ है, एनन फैफ्तक हैलख प्लाट्समल फान दुर्गा जी की जो है, वे सब उनमें से आज ससन फेरतख प्लाट्स तो भारत में है, दो जगह जो है तो नेपाल, एक बांग्लादेश, और 4 जो है तो आज के पाकिस्तान में, जिसमें भगवती के एक सिद्ध पीठ है हिंगलाज, वो भी आज पाकिस्तान। तो इस तरह से तो यहाँ पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि सब तुरंत जमीन पर नहीं है पर पहाड़ों पर बसी हुई है, जिसका तात्पर्य कि थोड़ा कष्ट हमें करना होगा तभी हम पहुँच पाएंगे। जैसे कि जो लोग जम्मू में गए हैं वैष्णो देवी कटरा, वो भी पहाड़ पर है, 14 किलोमीटर वन वे। जो लोग कभी हरिद्वार में हैं उनको पता है गंगा जी के एक दहीने एक बांवे, एक मनसा देवी एक चंडी देवी दोनों ही पहाड़ पर हैं। यह अलग बात है कि आज वहाँ पर पहुँचने के लिए काबल बान की व्यवस्था हो गई है, ठीक है। उसके बाद में हिमाचल में नैना देवी, ज्वालामुखी, कांगड़ा देवी इत्यादि जितने भी शक्ति पीठ है सब पहाड़ों पर हैं। बनारस के पास विंध्याचल रानी, तो ये सब माता की पीठ है। इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो जानते हैं वो है वैष्णो देवी। तो जो लोग गए हैं उनको पता है कितना आनंदमय और कितना सुख वहाँ मिलता है पहुँचने के बाद में। शुरू में तो लगता है कि थोड़ा कष्ट है, पर एक बार जो रास्ते पर चल पड़ता है उसको पता कि कितना आनंद इसमें, झूमते हुए गाते हुए मस्ती करते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद में जो सुख का अनुभव होता है वो शब्दों में बताया नहीं जा सकता। तो माता के नज़दीक तक पहुँचने के लिए थोड़ा कष्ट तो हमें सहना है ही है। इसलिए जैसे कि आप सब लोग जानते हैं 4 नवरात्रि का वर्णन हमारे यहाँ पर किया गया, जिसमें से 2 सभी लोग जानते हैं, एक तो चैत्र की नवरात्रि और दूसरी ये अश्विन की नवरात्रि, पर इसके बीच में भी अभी 2 नवरात्रि हैं, उसको हमारे यहाँ पर गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, जो देवताओं के लिए है, जो साधकों के लिए।
कई बार लोग हैरान होकर के पूछते हैं अचानक कि पंडित जी कब कितना नवरात्रि है, तो जब हम पूछते तुम कितना जानते हो तो दो, पर कभी कभी लोग कहते हैं कि चार है, तो हमने कहा चार के पीछे मत भागो, मैं तो कहता हूँ 40 है, तो चिहुक जाते 40 नवरात्रि। हाँ, 40 नवरात्रि का तात्पर्य होता है कि हर 9 दिन के बाद में तुरंत करते रहो करते रहो करते रहो, तो फिर तक माल नहीं द्रिहोंदक सस्ता, इसका मतलब बरिस भर का। अब कोई पूछे परंतु एक बरस तो द्रिहोंदक फाइव सस्ता दाख का, तो 5 दिन कहाँ गया, तो 5 दिन का तात्पर्य कि जिसमें तिथि कभी बढ़ जाती है कभी छोटी हो जाती है, कभी भद्रा इत्यादि, उसको सोच करके 5 दिन निकल जाते हैं। तो जो साधक है उसके लिए तो नवरात्रि साल भर चलता ही रहता है। 9 दिन पूजा खत्म करने के बाद में उठते हैं, कुछ भोजन पानी करते हैं, टहलकदमी करते हैं, फिर उसके बाद में ध्यान भरे लग जाते हैं, फिर ऐसे ही 9 दिन चलता रहता है। ऐसे जिसके पास उतना समय नहीं है उसके लिए 2 नवरात्रि है, जिसके पास थोड़ा और ज़्यादा समय है उसके लिए 4 नवरात्रि है। तो इस तरह से भगवती दुर्गा की उपासना हमें अपने जीवन में बंद नहीं करना चाहिए। तो नवरात्रि के तीसरे दिन में और तीसरी रात्रि में हम भगवती की जिस मूर्ति का ध्यान करते हैं उसको हमारे यहाँ पर कहा गया है चंद्र। चंद्रघंटा माता के विषय में शास्त्रकार कहते हैं पिंडच परवरारूढ़ाम चंडकोपास्त्र कैर्युताम प्रसादम तनुते महामहियम चंद्रघंटेटी विश्रुता। भगवती चंद्रघंटा की विग्रह आदि शक्ति माता दुर्गा के समान जो सिंह पर सवार हैं, जिनके शरीर में 10 हाथ हैं, भगवती के हाथों में कमंडलु, ज्ञान मुद्रा, तलवार, गदा, त्रिशूल, कमल के फूल, धनुष, बाण, अभय मुद्रा और बाला, ऐसे 10 हाथों में 10 अस्त्र शस्त्र और फूल इत्यादि को लिए हुए हैं, और जो हमेशा भक्तों के कष्ट, बाधा, ताप, पाप समस्त चीजों को मिटाने के लिए तत्पर रहती है। भगवती की आराधना में जो लोग योग साधना के द्वारा भगवती के ध्यान करते हैं वे मणिपुर चक्र में आदि शक्ति भगवती दुर्गा की ध्यान करते हैं, उनकी पूजन करते हैं और उनसे अपने शक्ति में वृद्धि होने के लिए माता दुर्गा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हमारा और आपका भी यही कर्तव्य है कि हम नवरात्रि में भगवती दुर्गा की महामंत्र ह्रीं दुं दुर्गायै नमः या ओम अयं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चय मंत्र का जप तप ध्यान करके और आदि शक्ति माता की कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करें। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस व्याख्या को समाप्त करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।

और प्रिय सुनने वालों, अभी प्रवचन आप सुने नवरात्र के उपलक्ष्य पर हमारे मान्यवर परम पूज्य पंडित श्री परशुराम रामलोचन तिवारी जी के जरिए। पंडित जी को हम सबकी तरफ से कहिए उजाला रेडियो और उजाला रेडियो के सभी सुनने वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।

नवरात्र के उपलक्ष्य पर सुनने वालों एक विशेष प्रोग्राम को आप सुने और यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। प्रोग्राम को हम लोग बना सके अमस्टरडम जायतो से अपोतेक द द्रीफ से अपोतेकर शांति राम शरण और कर्मचारियों के मदद से। इन लोगों की तरफ से नवरात्र के उपलक्ष्य पर शुभकामना बधाइयां स्वीकार कीजिए। हम लोगों की तरफ से धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों की मदद से प्रोग्राम हम लोग बना सके।

उजाला पेश करे है दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। एतवार एक तारीख नवंबर जोंदक इन नवंबर के दिन में थिएटर मीरवाट अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। दिवाली कॉन्सर्ट से पहले दिवाली फकल ओप्तोख्त में आप मुफ्त में हिस्सा ले सके हैं और दिवाली कॉन्सर्ट में लाइव ऑन स्टेज कलाकारों संजय जोधा, मौसमी, इंद्रोनील रॉय, रविंदर सिंह बेदी, सत्यम माता दिन, आविष्कार ऑर्केस्ट्रा के साथ जिसका लीडर है माएस्ट्रो रोनी भिखारी, प्रेजेंटेशन के लिए स्टेज पर होंगे सुधीर एंड जया। जोंदक इन नवंबर के दिन में 2:30 बजे से हाफ थ्री से इन लोग एंड दिवाली फोर प्रोग्राम क्वार्ट ओवर थ्री ग्रेटेस्ट फकल ऑफ टॉक्ट क्वार्ट फोर फीर से कॉन्सर्ट के शुरुआत हुई पहला भाग। टिकट के दाम है 20 यूरो और 15 यूरो। इसमें है एक ड्रंकी ग्रेटिस, ग्रेटिस गार्डरोब और ग्रेटिस टॉयलेट गब्रेक। जाने के चाहे आपके कि इस बार स्टार्ट पास न रही। टिकट और जानकारी के लिए meerfaart.nl जल्दी से टिकट खरीद लिए नहीं तो आपके पछताई के पड़ी। और हाँ, हमें तो जाए के पड़ी और आपके तो आवे के पड़ी। हाँ, दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जोंदक इन नवंबर के दिन में थिएटर द मेरफार्ट अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। अभी से आपको शुभ दीपावली।

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: कल आज और कल उजाला रेडियो हर एक पल
3: ये है उजाला रेडियो रात और दिन सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और आपको स्वागत किया जा रहा है प्रोग्राम दर्द दिल में, जो यहीं से आरंभ किया जा रहा है और जिस प्रोग्राम में दर्द भरे गीतों हम आपको सुनाते हैं, उन गीतों जिन्हें सुनकर के कभी दिल को तसल्ली मिलते हैं और कभी दिल का दर्द जो है और बढ़ जाता है। इत्मीनान से आप सुनिए, पेश है पहला गीत और ये होंगे किशोर कुमार की आवाज में।

कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा, हम किसी के ना रहे और कोई हमारा ना रहा। किशोर कुमार जी की आवाज में आप सुने 1961 की फिल्म झुमड़ू से निकाला हुआ, नई खंतीन एन जस्त की फिल्म झुमड़ू, जिसमें किशोर कुमार इस गीत को खुद गाए है, संगीत से सजाए है। इस फिल्म के स्टोरी जो है, कहानी जो है, खुद इन्हीं ने लिखे है, किशोर कुमार, और किशोर कुमार खुद काम किए इस फिल्म झुमड़ू में मधुबाला के साथ उन दिनों।

कोई नहीं है फिर भी है मुझको न जाने किसका इंतजार। लता जी की आवाज में आप सुने गीत को, और फिल्म का नाम पत्थर के सनम, 1967 की फिल्म पत्थर के सनम। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल म्यूजिक कंपोजर, और इस फिल्म में काम किए मनोज कुमार के साथ में वहीदा रहमान, मुमताज और प्राण। ये उजाला रेडियो है, प्रोग्राम का नाम है दर्द-ए-दिल।

दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे न जा। मोहम्मद रफी साहब की आवाज 1968 निहतिन अख्तन जस्तक के फिल्म हमसाया से निकाला हुआ गीत और संगीतकार म्यूजिक कंपोजर ओपी नय्यर। इस फिल्म में काम किए जॉय मुखर्जी के साथ माला सिन्हा, शर्मिला टैगोर, रहमान और मदन पोड़ी।

तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ या खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। मुकेश जी की आवाज 1962 निखंतिन त्वियन जस्टर के फिल्म हरियाली और रास्ता से, जिस फिल्म में म्यूजिक कंपोजर था शंकर एन जय किशन और इस फिल्म में काम किए मनोज कुमार, माला सिन्हा, शशिकला और ओम प्रकाश। और ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, प्रोग्राम का नाम है दर्द ए दिल।

दिल ने जिसे पाया था आंखों ने गवाया है, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़। देखा जाए 1958 नीखंती नाख्तन 50 के फिल्म मधुमती में गीत पेश आई है और म्यूजिक कंपोजर सलील चौधरी और फिल्म में काम किए दिलीप कुमार के साथ विजयंती माला।

फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। मोहम्मद रफी और आशा जी से आप गीत को सुने। 1966 निखंतिन जसन जस्तख के फिल्म ये रात फिर ना आएगी, ये रात फिर ना आएगी। म्यूजिक कंपोजर ओपी नैयर और काम किए फिल्म में शर्मिला टैगोर, बिस्वाजीत चटर्जी एंड मुमताज। उजाला रेडियो का प्रोग्राम दर्द दिल, जिसमें दर्द भरे गीतों पेश है।

सौ बार जन्म लेंगे और सौ बार फना होंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ 1963 की फिल्म उस्तादों के उस्ताद म्यूजिक कंपोजर रवि और इस फिल्म में काम किए अशोक कुमार के साथ प्रदीप कुमार और शशिकला जी।

उजाला पेश करे है दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इतवार एक तारीख नवंबर जोंदख ए नवंबर के दिन में थिएटर मीरफार्ट अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। दिवाली कॉन्सर्ट से पहले दिवाली फकल ऑप्टोक्ट में आप मुफ्त में हिस्सा ले सके हैं और दिवाली कॉन्सर्ट में लाइव ऑन स्टेज कलाकारों संजय जोधा, मौसमी, इंद्रोनील रॉय, रविंदर सिंह बेदी, सत्यम माता दिन, आविष्कार ऑर्केस्ट्रा के साथ जिसका लीडर है माएस्ट्रो रोनी भिखारी, प्रेजेंटेशन के लिए स्टेज पर होंगे सुधीर एंड जया। जोंदख इन नवंबर के दिन में 2:30 बजे से 2:30 से इन लोग एंड दिवाली फोर प्रोग्रामा क्वार्ट ओवर थ्री ग्रेटेस्ट फकल ऑफ टॉक्ट क्वार्ट फोर फीर से कॉन्सर्ट के शुरुआत हुई पहला भाग। टिकट के दाम है 20 यूरो और 15 यूरो। इसमें है एक ड्रंकी ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट गार्डरोब और ग्रेटेस्ट टॉयलेट गब्रेक। जाने के चाहिए आपके कि इस बार स्टार्ट पास न रही। टिकट और जानकारी के लिए meerfart.nl जल्दी से टिकट खरीद लिए नहीं तो आपके पछताई के पड़ी। और हाँ, हमें तो जाई के पड़ी और आपके तो आवे के पड़ी। हाँ, दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जोंदख ए नवंबर के दिन में थिएटर द मेयरफार्ट अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। अभी से आपको शुभ दीपावली।

0: Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
8: Doctor ji, Doctor ji, Doctor ji, please ek baat sunti jaiye. Bas ek baat, Doctor saab.
9: Kahiye.
8: वो जो आपने मेरे लिए दुआ की थी ना, जरूर सच्चे दिल से की होगी। भगवान ने सुन ली है और मुझे हो गया है।
9: क्या हो गया है?
8: मुझे प्यार हो गया है।
9: अच्छा, मुबारक हो।
8: लेकिन आपने ये तो पूछा ही नहीं, किससे?
9: अरे हाँ, ये तो मैं पूछने भूल गई, किससे?
8: जी वो,
9: बोलिए बोलिए, कौन है वो खुशनसीब?
8: जी वो खुशनसीब आप ही हैं।
9: थैंक यू वेरी मच। माफ करना, मुझे कोई भूख नहीं।
8: सुनिए, ये भूख वाली मोहब्बत बिल्कुल नहीं है।
10: ओए चांद जी।

जाते जाते ओ जरा जाते जाते जरा मुड़ के तो देख कुड़िए, जाते जाते ओ जरा जाते जाते

0: बहुत अच्छे, मगर तुम रुक क्यों जाती हो?
1: मुझे जाने दो अशोक बाबू।
0: नाजो,